0: এরপর শুরু হয় অতিথি বরণ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত রাষ্ট্রীয় উদ্যান গবেষণা কেন্দ্রের প্রকল্প সমন্বয়কারী ড. প্রকাশ পাতিল। তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানান,
1: ফল এক্সপোর্ট কা আচ্ছা হো রহা হ্যায় আজকাল, আবি গভর্নমেন্ট কা প্ল্যান জ্যাদা হ্যায় কি ডবল করনা হ্যায় এক্সপোর্ট জ্যাদা করনে দো হিসাব সে, ক্যুঁকি হামারা প্রোডাকশন জ্যাদা হোনে সে ভি ফার্মার লোগোঁ কা লাস নাহি হোনা চাহিয়ে এক চিজ সে, আর দূসরা চিজ সে ফরেন আর্নিংস বহুত জরুরি হ্যায় দেশ কে লিয়ে, আজকাল তো হাম সোচ রহে না হামারা রুপি কা ভ্যালু কম হো রহা হ্যায়, ইস হিসাব সে গভর্নমেন্ট কা প্ল্যান হ্যায় জহাঁ জহাঁ পসিবিলিটি হ্যায় वहाँ एक्सपोर्ट करिए, और इस हिसाब से फार्मर को भी फायदा होगा और दूसरा देश का भी हमारा स्टैंड ग्लोबल में अच्छा रहेगा। लास्ट महीने में एक एक्सपोर्टर का मीटिंग होगा लखनऊ में भी, सब एक्सपोर्टर के साथ क्या क्या दिक्कत है, कैसा कर सकते हैं हम मदद, इसका हिसाब से कर रहे हैं। जरूरी है, बहुत जरूरी है, दिशा में अच्छा क्वालिटी प्रोडक्शन चाहिए, वो ऐसा क्वालिटी प्रोडक्शन है तो सबको ट्रेन करने का और इंफॉर्मेशन फार्मर का उस हिसाब से बताने अच्छा है।
2: कौन सा फ्रूट से ध्यान दिया?
1: आम का सीजन है अभी, आम का भी है अभी, ग्रेप तो हो रहा है बहुत, इंडिया का ग्रेप अच्छा है, लीची का सीजन है, आप सीजन लीची साउथ इंडिया में अभी चल रहे उसका भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर पंजाब से कोशिश किया था लीची एक्सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे एक दो ट्रेडर्स अच्छा कर लिए।
2: वेस्ट बंगाल का क्या क्या कमती है? तो इधर तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, ये तो मैं भी एक फार्मर से हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं कर रहा।
1: अभी शुरू करना है, अभी मालडा का बहुत जगह पे इसके, इधर का भी पाइन एप्पल भी अच्छा है वेस्ट बंगाल में, आम भी अच्छा है, बहुत फसल अच्छा आता है, अभी उस दिशा में अभी गवर्नमेंट भी शुरू कर रहे है। इसमें दो चीज़ है, सिर्फ फार्मर्स में नहीं होगा, उनके साथ ट्रेडर भी जोड़ना है, इस दिशा में करने से भी लिंक कर सकते हैं, एक दो बार पहले कंसाइनमेंट भेजना है वहाँ से पता लगेगा, इस दिशा में सब मिलके यूनिवर्सिटी एंड अपेडा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंसी है वो इस दिशा में काम करते हैं, वो दोनों का जोड़ते हैं, जो फार्मर है ग्रो कर रहे हैं और जो ट्रेडर है, तो दोनों मिला के करने का जरूर है, इस तरह के सेंटर है, हम भी कोशिश करेंगे उनको मिल के जहाँ जहाँ जिस चीज़ वैरायटी का कर सकते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं।
2: फूड प्रोसेसिंग के बारे में क्या सोच है?
1: प्रोसेसिंग चल रहे तो बंगाल में तो
2: 40% तो लॉस होता है।
1: हाँ, तो प्रोसेसिंग का जो चीज़ है उसमें जो वैरायटी का है उसका भी है, और दूसरा चीज़ सस्ता में मिल रहा है, प्रोसेसर भी ऐड करना है, अभी एस्टैब्लिश होने से हो जाएगा, जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश होना है, पाइनएप्पल का इधर है वेस्ट बंगाल में अच्छी तरह से हो रहा है, उसी हिसाब में हम कभी कोशिश करना है।
0: विशेष अतिथि हिसेबे उपस्थित छिलेन विधानचंद्र कृषि विश्वविद्यालय अध्यापक तथा खोर्धा विधानसभा माननीय विधायक डॉ কল্যাণ চক্রবর্তী। তিনি তার ভাষণে বলেন,
3: কৃষি কাজই কেবল কর্ম, অর্থাৎ কৃষি কাজ যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ, এই কথাটা বেদের ঋগ্বেদে আমরা অতি সুন্দরভাবে উল্লেখ হতে দেখি। আরেকটি কথা, সেটি হচ্ছে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বাংলাতে, পশ্চিমবঙ্গ এবং বর্তমান বাংলাদেশে প্রথম হর্টিকালচার সংক্রান্ত ডকুমেন্ট আমরা দেখেছি বিভিন্ন।

0: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছিলেন গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে মিডিয়াম ওয়েভে 456.6 মিটার অর্থাৎ 657 কিলোহার্টসে। মিডিয়াম ওয়েভে 456.6 মিটার অর্থাৎ 657 কিলোহার্টসে শুনুন দিল্লি কেন্দ্রের খবর।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष कि किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए कड़े मुकाबले में खलीलुर रहमान को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के बहुपक्षीय मामलों के विदेश विशेष दूत एंड्रियास काकोरिस को 91 वोट प्राप्त हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश

मंत्री डॉ खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कल मैक्सिको के विदेश मंत्री रॉबर्टो वेलास्को अल्वारेज से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने रॉबर्टो वेलास्को अल्वारेज को विदेश मंत्री नियुक्त होने पर बधाई दी है। साथ ही दोनों नेताओं ने भारत और मैक्सिको के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने तथा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर काम करने पर सहमति भी व्यक्त की है। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड में खेले जा रहे तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14 ओवर में 4 विकेट पर 122 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय समय अनुसार यह मैच रात 11 बजे शुरू हुआ। 3 मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।